अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: की
1: जय।
0: श्री आनंद कंद भगवान की
1: जय।
0: श्री कौशल्यानंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री दशरथ नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री कैकेयी नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री सुमित्रानंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री चारों भैयन की
1: जय।
0: श्री हनुमान

श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की।

0: भरजनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम
1: तर्जनम जंतुदानाम राम रामेति गजनम श्री सीतारामम हरा।

श्री गोविंद गीता अध्याय दो सांख्य योग। अश्रुपूरित नेत्रों से शोकमग्न अर्जुन अतिशय व्याकुल एवं व्यथित है। इन विषम परिस्थितियों में वह श्री कृष्ण का शरणागत शिष्य होना स्वीकार करता है तथा श्रेष्ठ कल्याणकारी एवं धर्मनिष्ठ उपदेश हेतु विनती करता है। श्री कृष्ण उस ज्ञानामृत की वर्षा करते हैं जो संपूर्ण गीता के सार स्वरूप 72 सूत्रों के इस अध्याय में समाया है। आइए इस दिव्य ज्ञान की सरस संगीतमय साधना करें।

सेनाओं के मध्य युद्ध विमुख वह शोक से स्तब्ध अर्जुन के सभी तर्कों को मात्र मोहजन्य बतलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवित मृत का शोक करना महज अज्ञानता है। मधुसूदन कहते हैं,

श्री भगवान आत्मा एवं देह के अंतर को स्पष्ट करते हैं। वे समझाते हैं कि भौतिक देह असत है, नाशवान है, परंतु आत्मा अजन्मी है, अविनाशी है, शाश्वत है। यह भौतिक देह तो वस्त्र की भांति है, जिन्हें पुराना होने पर बदल दिया जाता है। ऋषिकेश कहते हैं

हे अर्जुन, युद्ध से विमुख होना, अपने स्वधर्म का त्याग करना है। इस अज्ञानता पूर्ण कृत्य से तुम मात्र अपयश एवं उपहास के पात्र बनोगे। अतः युद्ध के लिए तैयार हो।

श्री भगवान अपने शरणागत शिष्य को स्थिर बुद्धि के साथ फल आसक्ति से विहीन निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। जनार्दन कहते हैं।

कुरुनंदन अर्जुन प्रश्न करता है कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, समाधिस्थ की क्या भाषा है? प्रत्युत्तर में मधुसूदन कहते हैं कि काम, इच्छा, राग, भय व क्रोध से मुक्त, शुभ अशुभ, सुख दुख व हानि लाभ में एक समान रहने वाला आत्मसंयमी योगी ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विषय लीन पुरुषों में क्रमशः काम, क्रोध, मोह एवं स्मृति भ्रम उपजते हैं, जिससे बुद्धि नाश एवं अधोपतन हो जाता है। श्री गोविंद के शब्दों में

0: पतनस्यसुते देवी यमुने त्वं महानदी ऋषिसिद्धिसुरैर्जुष्टे गृहाणार्घ्यं नमो स्तुते गृहाणार्घ्यं नमो स्तुते।
1: मैं उपत्यका यमुना यात्रा के पहले पड़ाव यमुनोत्री में आपका स्वागत करती हूँ। ये बाहें फैलाकर भारत भूमि की रक्षा करता पर्वतराज हिमालय और इसके विशाल वक्ष पर मोतियों की लड़ियों की तरह झूलती नदियां, तेज दूत की सिधार गंगा की और दुबली पतले दुधारा यमुना की। यमुना जो पहाड़ों में पहले जन्म लेने के नाते गंगा की बड़ी बहन है। तो यहाँ की कहानी सुनोगे? उत्तर दिशा में हिमालय की कोख से यमुना के जन्म की, यमुनोत्री की।
2: यम की बहन यमी सूर्य और संज्ञा की पुत्री थी। यमी के जन्म से पहले ही संज्ञा के किसी अनाचरण पर सूर्य ने उसे श्राप दिया था, तेरी पुत्री धरती पर एक उच्छृंखल नदी बनकर जन्म लेगी।
1: यमी यमुना बनी, लेकिन सामान्य नहीं रही। यमुना की गाथा द्वापर से भविष्य तक संस्कृति, इतिहास और संस्कार का पर्याय बन गई। लेकिन जो भी गंगोत्री और हिमालय में स्थित अन्य धामों की यात्रा कर यमुनोत्री पहुंचता है, उसे पहली बार में तो निराशा ही लगती है। सुप्रसिद्ध लेखक श्री विष्णु प्रभाकर को भी कुछ ऐसा ही लगा था, किंतु फिर
3: हिमालय के चार प्रसिद्ध तीर्थ हैं यमुनोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चारों में गया हूँ। यमुनोत्री में जब पहुंचा था भयानक मार्ग को पार करता हुआ, तो मुझे बहुत निराशा हुई थी। तो ये सूर्य की बेटी है और यम की जो भगनी है, वहाँ मानसल सौंदर्य की आशा करना व्यर्थ होता है। यमराज ने अपनी बहन की रक्षा के लिए चारों तरफ पहाड़ खड़े किए हैं, वो वैसे ही हैं जैसे यमदूत होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, तो घाटियों में देखा कि पत्थरों के बीच में से कल कल छल छल की आवाज़ आ रही है और बीच में से हल्का हल्का पानी उछलता उछलता चला जा रहा है। तो उसी की तरफ देखते देखते मेरी दृष्टि फिर उधर गई, ऊपर दूर, पहाड़ बहुत ऊंचा है, बंदरपूछ उसका नाम है, उसकी भी एक कहानी है। तो उस बंदरपूछ पर्वत से यमुना का उद्गम होता है। तो मैंने देखा कि वहाँ से बहुत ऊपर देखने पर दो धाराएं हैं जो फुहार की तरह से उड़ रही हैं। बड़ा सुंदर लगता है वो फुहार उड़ना। एक का नाम है कालिंदी, एक का नाम यमुना। नीचे आकर वो दोनों की दोनों मिल जाती हैं और पत्थरों के बीच में से होती भी चलती हैं। फिर भी ऐसा नहीं लगता कि यमुना का कोई बहुत बड़ा वैभव है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर ही गरुड़ गंगा अथाह जलराशि लेकर के उसमें समा जाती है। तब जो है यमुना का असली रूप प्रकट होता है। श्याम वर्ण है यमुना का, वहाँ श्याम जल है, और फिर वो पूरे उद्दाम वेग से आगे चलती चलती चलती चली जाती है।
1: यमुना टिहरी गढ़वाल में 6,330 मीटर ऊंचाई पर प्रकट होती है। कलिंद पर्वत से आगे चलकर कालिंदी में ऋषिगंगा, उमा, हनुमान गंगा आदि सात धाराएं आ मिलती हैं। 11 झरने इसे बंदरपूछ से विदा देते हैं। कलसी में टौंस नदी इससे गले मिलती है, जिसमें यमुना से भी अधिक पानी है। और तब यमुना नाचती, बल खाती, छींटे उड़ाती, झरनों में झरती, घाटियों, चट्टानों, गहरी खाइयों और पहाड़ों में रास्ता बनाती, तेजी से मैदानों की ओर चल निकलती है। धर्माधिकारी डॉक्टर विद्याधर यमुना

0: के इस वेग की शास्त्रोक्त व्याख्या करते हैं।
1: यमुना के स्वरूप के विषय में सबसे प्राचीन सामग्री अर्थात ऋग्वेद संहिता के एक मंत्र को लेते हैं, जिसकी व्याख्या में यास्क ने, जो कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुए हैं, बहुत अच्छा स्वरूप हमारे सामने रखा है। यमुना के संबंध में इसमें प्रयुवती गच्छति तिवा ये दो विशेषण प्रयुक्त किए हैं। अनेक नदियों से यह मिलती रही, फिर भी अपना अस्तित्व इसने कभी भी नहीं खोया। इसको देख करके युवती के दर्शन से जिस प्रकार आह्लाद या प्रसन्नता या स्फूर्ति उत्पन्न होती है, इसी प्रकार के भाव उत्पन्न होते थे, ऐसा यास्क के कथन का सारांश निकाला जा सकता है।
0: शिवालिक की पहाड़ियों में घूमती विचरती यमुना 130 किलोमीटर लंबी पर्वतीय यात्रा के बाद फैजाबाद में मैदानों में प्रवेश करती है। खनिज, औषधियों और उपजाऊ मिट्टी से भरा मंगल घाट अब यमुना खेतों में उलट देती है। इस जल की बाहें दूर दूर तक फैलाने के लिए इससे दो महत्वपूर्ण नहरें निकाली गई हैं। पश्चिमी यमुना नहर, जो अम्बाला, करनाल, रोहतक और हिसार आदि जिलों को सींचती है। इस नहर का काम 500 वर्ष पूर्व फिरोज शाह तुगलक ने आरंभ करवाया था। तब से आज तक ये कई बार बंद होती खुलती दूर तक फैले खेतों में हरा सोना सींच रही है।

इसी स्थान पर लगभग 200 वर्ष पहले पूर्वी यमुना नहर निकाली गई, जो दोआब नहर कहलाती थी। आज ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ के विस्तृत इलाकों को सींचती है। पानीपत के युद्ध देखती, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती यमुना कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के शस्त्रों की झनकार और पार्थसारथी कृष्ण का गीता का उपदेश अपने अंदर समोती है। इसके दूसरे तट से कुछ ही दूर है मेरठ, जहां 1857 में मंगल पांडे ने देश की आजादी का पहला बिगुल फूंका था।

0: और यही सब देखती समझती रीछती खींचती यमुना आ पहुंची है सात बार उजड़ने और बसने वाली दिल्ली में। यहां अब मैं उपत्यका आपसे विदा लेती हूं।
1: मैं रोशन हूं, दिल्ली से मथुरा तक की यमुना यात्रा में मैं आपके साथ चलूंगा। कभी इंद्रप्रस्थ कहलाने वाली दिल्ली का इतिहास शक्ति की होड़ का इतिहास है। इसी के किनारे चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासू की रचना की थी और इसी यमुना नदी की छाती पर पृथ्वीराज संयोगिता के फूलों लदे रंगीन बजरे तैरा करते थे। उसी पृथ्वीराज के चढ़ते सूर्य को खून में नहलाकर जब मोहम्मद गोरी ने अपने 16 पराजयों का बदला दिल्ली से लिया तो यमुना उसके घावों पर शीतल जल छिड़कने के अलावा कुछ भी न कर पाई। अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश सबका इतिहास बांटती रही यमुना इब्न बतूता के साथ कि आप पहुंचाते हैं मुरलंग। गांव कूचे खेत खलिहान महल झोपड़े उजाड़ता दिल्ली के खून से यमुना का पानी लाल करता।

0: लेकिन शेरशाह के बाद दिल्ली का भाग्य फिर जगा। यमुना फिर से राग रंग में नहा गई। शाहजहां यमुना का मतवाला हो गया। लाल किले के दीवाने खास से लेकर पूरे चांदनी चौक में यमुना नहर बहने लगी। बहादुर शाह जफर और अनेक दिग्गज साहित्यकारों ने एक नई तहजीब, एक नई भाषा, प्रेम और राष्ट्रभक्ति की नई इबारत गढ़ी। और बहुत कुछ होता रहा है यमुना के किनारे दिल्ली में। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर शमीम हनफी के शब्दों में,
1: यमुना का जिक्र उर्दू में यानी गद्य और पद्य दोनों में कई लेवल्स पर आया है, कई स्तरों पर आया है। एक तो जैसे यमुना एक नदी के तौर पर, एक फिजिकल फिनोमेना बिल्कुल, ये कि जो एक दृश्य उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये दूसरा है यमुना एक सिंबल के तौर पर, सिंबल ऑफ लव, ऑफ ब्यूटी, और ये मतलब टाइम को एक तरह से एक टाइम में सफ़र करती हुई एक सच्चाई, उसके सिंबल के तौर पर। तीसरा एक यमुना एक आर्किटाइपल इमेज के तौर पर, और चौथा है कृष्ण भक्ति के एक इशारे के तौर पर। तो इस तरह के कई लेवल्स मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो समझिए कि जब से उर्दू शायरी की तारीख शुरू होती है अब तक आप देखें तो ये सिलसिला जारी है।
0: और फिर आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने आठवीं दिल्ली बसाई, नई दिल्ली। अंग्रेजों की दिल्ली के प्रमाण हमें कुतुब मीनार के पास स्थित दिल्ली अभिलेखागार के अनेक चित्रों में मिलते हैं। आजादी की लड़ाई में दिल्ली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी वस्त्रों की होली से लेकर शहीद हो जाने तक का इतिहास रचा। यमुना ने फिर देखा सदियों की गुलामी का सूर्यास्त और स्वराज का सूर्योदय।
2: आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था वो कुछ हमारे आंखों के सामने आ गया, वो चीजें हमारे कब्जे में आई। दिल हमारा खुश होता है एक मंजिल पर हम पहुंचे। ये हम जानते हैं कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की और ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत नहीं रहेगी। आज हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क है।
0: और इसी दिल्ली में एक भारतीय ने ही बापू के प्राण हर लिए थे। यमुना के किनारे ही बनी है महापुरुषों की समाधियां, जहां देश का इतिहास सो रहा है। अगर हम कहें कि आधुनिक युग में नौवीं दिल्ली बस रही है तो अतिशयोक्ति न होगी। अभी तक यह शहर मुख्यतः यमुना के पश्चिमी तट पर बसा हुआ था। अब कई पुलों से जुड़ा उसका पूर्वी किनारा ऊंचे नीचे मकानों के समूहों से पटता जा रहा है। आजकल इसके दोनों किनारों को जोड़ता 16 ट्रैक वाला देश का सबसे बड़ा पुल निर्मित हो रहा है। और पुलों की भी योजना है। आबादी के विस्फोट के साथ साथ यमुना पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ओखला से वजीराबाद तक अनेक नाले प्रतिदिन 55 करोड़ लीटर गंदगी उलीच रहे हैं। यमुना में पानी की कमी होते देख छोटी बहन गंगा को दिल्ली लाया गया। तेजी से बढ़ती बहुसंख्यक प्यास का अंत कहां जाकर होगा? क्या गंगा यमुना मिलकर भी जरूरत भर स्वच्छ पीने योग्य पानी दे पाएंगी?

0: मैं श्यामा हूँ, मथुरा की रहने वाली। यमुना नदी से भेंट करने मैं शहर से दूर कछारों पर निकल आई हूँ। वो आ रही है यमुना, हिंडन नदी का जल साथ लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती। देख रही हूँ कि मैया किस तरह जनजीवन को पाल रही है। काछी, कुमार, मल्लाह, धोबी, रेती ढोने वाले सभी अपने पेट पालन के लिए यमुना पर निर्भर हैं।
1: अच्छा, ये यमुना जी से आप लोग ये कपड़े धो के कितनी कमाई कर लेते होगे महीने में एक परिवार?
2: मतलब

0: साहब कमाई तो उसमें कुछ नहीं है, मेहनत ज्यादा। हम कुछ भी 20 रुपए रोज भी नहीं पड़ते, 3 दिन यहाँ पे लगे रहते हैं हम, माए बाल बच्चों समेत।
1: भैया आप तो यहाँ नाव चलाते हैं, आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम देवीलाल है।
1: अच्छा, ये जमुना मैया तो आपका पेट पाल रही हैं, परिवार का पेट पाल रही हैं, तो कैसे आप, आपको क्या लगता है, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं?
2: संतुष्ट होने का तो ये साहब, संतुष्ट तो होते हैं हम लोग, अगर जमुना में पानी पूरी तौर से साफ तरीके से अगर पानी रहे तो यात्री परदेसी आए तो हमारा धंधा रोजगार भी थोड़ा चले और उसके चलने के साथ साथ हमारे बच्चों का भी पालन हो।
1: तकरीबन एक दिन में कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी?
2: कमाई का तो सरकार ऐसा है कि यमुना में अगर साफ सफेद अच्छी तरीके से बनी रहे तो हम लोगों का पेट पालन हो सकता है।
1: पूरे देश में नदियों के अद्भुत चित्र व मूर्तियां मिलती हैं। मथुरा राजकीय संग्रहालय की निदेशक श्रीमती पुष्पलता ठकुरेल यमुना की कला छवियों का वर्णन इन शब्दों में करती हैं।
3: हमारे यहाँ नदियों को पवित्र देवियों के रूप में प्रारंभ से ही पूजा जाता है। यद्यपि कला में इन देवियों का अंकन बहुत बाद में हुआ है और मथुरा कला में यमुना का अंकन गुप्तकाल एवं विशेषकर मध्यकाल में हुआ है। एक पैनल हमारे संग्रहालय में ऐसा है जिसे कृष्ण जीवन के कथानक से हम जोड़ते हैं। उसमें यमुना को मात्र नदी के रूप में प्रदर्शित किया है, यमुना को देवी के रूप में मध्यकालीन द्वार शाखाओं पर दोनों किनारों पर एक ओर गंगा और दूसरी ओर यमुना का अंकन किया जाता था। इन पर यमुना को स्त्री रूप में मानवीकरण रूप देते हुए पूर्ण आभूषणों से सुसज्जित ऊपर से यानी कि सिर से लेकर पैरों तक वस्त्र एवं विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित दिखाया है। जिस प्रकार कलाकार गंगा को प्रदर्शित करने के लिए मगर का अंकन करता है, उसी प्रकार यमुना का वाहन कच्छप दर्शाया गया है। कभी कभी यमुना को कमल नाल लिए भी दिखाया है। यमुना की मध्यकालीन कुछ प्रतिमाएं हमें महावन के जैन 84 मंदिर से मिली हैं। ऐसी कोई प्रतिमा मैंने अभी नहीं देखी जहां इन देवियों को बैठे दर्शाया गया है।
1: मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, पूरी की पूरी ब्रजभूमि यमुना का स्पर्श पाकर आम्र कुंजों, करील की झाड़ियों, कृष्ण चूड़ा, जवाकुसुम, चंपा और कदम्ब के झुरमुटों की रम्य स्थली बन गई है। यहाँ आकर कृष्ण, राधा और यमुना एकाकार हो उठते हैं। द्वापर की स्मृतियां कलियुग का द्वार खटखटाने लगती हैं। इस पुरातन तीर्थ भूमि के पास ही स्थापित किया गया है आधुनिक विकास का तीर्थ तेल शोधक कारखाना। यमुना के किनारे उद्योग धंधे पनप रहे हैं। अब मैं श्यामा सूरकुटी में यमुना मैया का एक बार फिर स्वागत करने और यहाँ की महिमा मई धरती से आपका परिचय कराने के लिए प्रस्तुत हूँ। सूरकुटी से आगरा कुल 22 किलोमीटर ही तो है। यहाँ भक्त कवि सूरदास ने कुटी बनाई थी और मान्यता है कि सूर सागर के अधिकांश पद यही यमुना तट पर रचे गए। यहाँ पर सूर स्मारक संस्थान ने एक अंध विद्यालय और विद्यार्थी निवास की व्यवस्था की हुई है।

यमुना जी के किनारे किनारे बढ़ती मैं सिकंदरा और अमर सिंह राठौर का अश्व स्मारक देखती 450 साल पुराने आगरा शहर के किले पर आ पहुंची हूं। यहां ग्वालियर के राजा ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। यहां की लाल दीवारों में हुमायूं का परपोता शाहजहां वर्षों

0: अपने बेटे औरंगजेब की कैद में रहा। यहीं से वो देखा करता था यमुना पार अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल का अमर स्मारक ताजमहल। मुगलों ने आगरा को अपनी राजधानी क्यों बनाया? पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक श्री शंकर नाथ कहते हैं,
1: अपने साम्राज्य को बढ़ाने, उसकी सुचारू रूप से देखभाल करने, ट्रेड

0: नौकाओं के द्वारा मुगल सेनाएं यहाँ से बंगाल तक धावा मारती थी अथवा यहाँ से उत्तर की तरफ देहरादून के इलाके तक जाती थी।
1: मथुरा से आगरा के बीच की भूमि अनेक धर्मों और संस्कृतियों के मिलन की भूमि रही है। डॉक्टर ब्रिजवल्लभ मिश्र,
2: ईसा के जन्म से कई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन साहित्य को देखने से लगता है कि यमुना उस समय, इसका सबसे बड़ा महत्व ये था कि इसके माध्यम से व्यापार हुआ करता था और फिर यहाँ मथुरा नाम बनने से पूर्व ही जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का और वैष्णव धर्म का बहुत बड़ा केंद्र स्थापित हो गया। तो जैन धर्म की मूर्तियां बनाने के बहुत बड़े कारखाने और बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाने के बहुत बड़े कारखाने यहाँ बने, यहाँ से मूर्तियां बन बन के बाहर जाती रहीं।

0: और उससे आगे की यात्रा में मैं आपके साथ हूं। मेरा नाम तीर्थराज है। प्रयागराज संगम तक पहुंचते पहुंचते अनेक नदियां यमुना में आकर मिल जाती हैं। वेनगंगा, सेंगा, चंबल, जो अपने साथ क्षिप्रा, काली सिंध और बनास की जलांजलि लाई थी। इटावा के पास जयचंद और शहाबुद्दीन गोरी की मुठभेड़, कालपी के पास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और तांत्या टोपे का साहस, सब यमुना ने देखे। कालपी से आगे बेतवा और केन नदियां उसमें आ मिली हैं। यमुना का वेग बढ़ गया है, वह गंगा से मिलने को आतुर है। लेकिन एक छोटा सा गांव कोसम, जो कभी वैभवशाली कौशाम्बी था, बस अब खंडहर बचे हैं, और बची है अशोक की एक अकेली लाट, यमुना की यादों की साक्षी। अब आ गई यमुना राजापुर में। भक्त शिरोमणि तुलसीदास के रामचरित मानस की रचना भूमि, इतिहास जैसे अतीत है, उसी तरह यमुना की 1306 किलोमीटर की यात्रा भी अतीत होने जा रही है। बड़ी बहन यमुना अपना अथाह श्याम जल गौरवर्णा गंगा को सौंप कर विलीन हो रही है। यमुना, गंगा और गुप्त सरस्वती, तीनों का मिलन शतकू बीच तीर्थ बन गया है। श्री केशव चंद्र वर्मा
1: राज साहब ऐसी बातें कहते थे कि जो सूत्र के रूप में होती थी, उन्होंने एक बार ये कहा था कि गंगा यमुना की जो द्वाबे की संस्कृति है, सच पूछो तो यही भारतीय संस्कृति की मूल है। इसी के आधार पर हम हमेशा भारतीय संस्कृति को समझ सकते हैं। जो कुछ भी इसके अलावा इस देश में घटित हुआ है, वो इसी से कहीं न कहीं प्रभावित है। उसे डॉक्टर रामनोहर लोहिया ने भी कहीं कहा है, यमुना का वर्णन करते हुए, कि वह रस की नदी है। कृष्ण और राधा का जो भारतीय प्रतीक है, वो यमुना को ही समेट कर चलता है। यमुना के किनारे किनारे प्रयाग तक बहुत कुछ आपको ऐसा मिल सकता है जिसमें उस संस्कृति की अनेक छवियां जगह जगह अंकित हैं।
2: मैं कलिंग सुता हिमालय की गोद से निकलकर यहां वहां पहुंची हूं। थम गई है जैसे मेरी यात्रा, रुकी हुई हूँ गहरी धीर चुपचाप, और हर हराती हुई आ रही है।

0: उज्ज्वल वर्णी गंगा बहन, हम दोनों मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और नीचे नीचे बह रही है बहन सरस्वती। हम तीनों का ये मिलन कैसे पवित्र न होता, कैसे न बन जाता ये स्थल तीर्थराज प्रयाग।
1: संगम के इस पवित्र मिलन को साक्षी बना माता कौशल्या ने सीता को आशीर्वाद दिया था, अचल हो अहिवात तुम्हारा जब लगे गंग जमुन की धारा। शाश्वतता के इस प्रमाण को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उनकी चर्चा श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल ने की, जो गंगा कार्य योजना उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय निदेशक हैं।
2: यमुना निर्मलीकरण की एक योजना सरकार के विचाराधीन है और इस योजना को सहायता देने के लिए जापान सरकार आगे आई है, उनके साथ बातचीत चल रही है और हमें आशा है कि शीघ्र ही मथुरा, वृंदावन, आगरा और हरियाणा एवं दिल्ली में भी इस दिशा में कुछ काम होगा। जहाँ तक इलाहाबाद का सवाल है, मैं यह कहूँगा कि जैसे नदियाँ समाज की शिराएं हैं, उसी प्रकार से सीवर शहर की धमनियाँ हैं। तो जब तक सीवर लाइनें साफ रहेंगी, लोग इन्हें गंदा नहीं करेंगे, इनमें कूड़ा करकट नहीं डालेंगे, तो निश्चय ही यह गंदगी पंपिंग स्टेशन तक जाती रहेगी और हम इसे निरंतर पंप करते रहेंगे और नदियों में मलजल जाने से रुकेगा, जिससे कि शहर का स्वास्थ्य लाभ होगा और हमारी नदियां भी स्वच्छ होंगी।
3: इमं मे गंगे यमुने सरस्वती सुतो दृष्टो मम सजता परुष्या ऐसे कन्या मरुद्रभे वितस्तया की।

इस जगत का पालनहार अपने भक्तों से जैसे प्रेम करता है, वैसे ही अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है। हर भक्त के लिए प्रभु के दरबार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंच पाना आसान काम नहीं। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हम पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन, नाम सुमिरन, उसका मनन चिंतन करते हुए आराधना के अलग अलग मार्गों का सहारा लेते हैं, मगर ये सब करते हुए भी जब ईश्वर का साक्षात्कार ना हो तो भक्त हरि से शिकायत के स्वर में याचना करता है, मैं कौन सी राह अपनाऊं कि प्रभु तेरे दर्शन हों।

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

0: भगवान महादेव की महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि किस प्रकार कुबेर को भगवान शंकर की कृपा का सनातन पद प्राप्त हुआ और किस तरह भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। आज के कार्यक्रम में हम आपको कामदेव और रति के विवाह का प्रसंग सुनाएंगे। ये कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड में वर्णित है। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात काल चक्र की गति तो बहुत तीव्र हो गई होगी।
2: हाँ परम ज्ञानी शौनक जी, इस संपूर्ण सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। ये कथा रुद्र संहिता के दूसरे खंड में वर्णित है।
1: इस भाग में कौन कौन से प्रसंग हैं?
2: संध्या एवं कामदेव के जन्म के अतिरिक्त कामदेव एवं रति का विवाह और संध्या का अरुंधति के रूप में मुनि वशिष्ठ से विवाह का प्रसंग इसके मुख्य अंग है।
1: मुनिवर सूत जी, इन विवाह प्रसंगों का महत्व क्या है?
2: शौनक जी, ये महाप्रभु की दूरदृष्टि के परिचायक हैं। भावी मानव के जन्म को दृष्टि में रखते हुए इन विवाहों के माध्यम से ही उसके लिए सामाजिक नियमों की नींव रखी गई।
1: अच्छा, फिर तो महामुनि सूत जी इस कथा को विस्तार से बताइए।
2: अवश्य महामुनि शौनक, दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि कर ब्रह्मा अति प्रसन्न हुए तथा स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलय, पुलसत्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जैसे प्रभावशाली मानस पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा के हृदय में एक अत्यंत रूपवती नारी उत्पन्न हुई, जिसके रूप लावण्य को देखकर मुनिजनों के मन में भारी जिज्ञासा हुई।

0: ये अत्यंत लावण्यमय नारी कौन है?
1: मुनिवर, आप इन्हें नहीं जानते? ये परम पिता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या है।
0: हाँ, देखिए चमत्कार तो देखिए, दिन में ये क्षीण पड़ जाती हैं और सायंकाल में इनका रंग रूप खिल उठता है,
1: तभी तो ये साय संध्या कहलाती हैं।
0: ये निरंतर किसी मंत्र का जाप करती रहती हैं।

0: अरे ये कैसा प्रकाश पुंज है?
1: हाँ मरीचि, और इस पुंज में से एक अद्भुत और दिव्य नर प्रकट हुआ है।
0: प्रजापति दक्ष, इसका ओज सहस्त्र सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रकाशमान है।
1: अरे
0: देखो तो, इसके विशाल स्कंध, बलशाली भुजाएं, वज्र समान कठोर बाहु।
1: मुनि श्रेष्ठ भृगु, मानो संपूर्ण सृष्टि का पुरुषत्व इसकी देह में समा गया हो।
0: हाँ, मत वाले गज जैसी चाल, खिले हुए कमल समान नेत्र,
1: करों में पुष्प धनुष और पांच पुष्प बाण।
0: अरे देखो तो, अब वो पितामह ब्रह्मा के सम्मुख नतमस्तक हो रहा है।
2: हे जन्मदाता, मेरा नमन स्वीकार करें।
3: हजर अमर भव।
2: आज्ञा करें, मेरा जन्म किस निमित्त हुआ है, मैं कौन सा कार्य करूंगा?
3: वत्स, अपने इस मोहक रूप तथा इन पांच पुष्प बाणों से तुम नर नारियों का मन मोहते हुए सृष्टि के सनातन कार्य का संचालन करोगे। तुम्हारा ये कर्म सृष्टि का नियामक होगा।
2: जो आज्ञा दे, कृपया मुझे

0: मेरे नाम से भी अवगत कराएं।
1: ये कार्य मेरे ये पुत्र करेंगे।
2: पुत्रो
1: जीवितामिता, इस देवात्मा का नामकरण करो।
2: जैसी आज्ञा है।
3: जन्म लेते ही तुम हमारे मन को मचने लगे हो, अतः मैं ब्रह्मा पुत्र मरीचि तुम्हारा नाम मन मत रखता हूँ।
4: अति उत्तम। तुम में लोगों को मदमत्त बना देने की क्षमता है, अतः मैं दक्ष तुम्हें मदन नाम देता हूँ।
3: सुंदर, अति सुंदर।
4: और मदन, तुम बड़े दर्प के साथ उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, तथा सदर्प होने के कारण तुम्हारा एक नाम कंदर्प भी होगा।
1: अनुज, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे। तुम्हारे समान सुंदर कोई भी दूसरा नहीं होगा। अतः काम रूप होने के कारण मैं भृगु तुम्हारा नाम काम रखता हूं।
0: इतने नाम? मेरे इतने नाम प्रभु?
1: मेरे मन से तो तुम्हारे एक ही रूप का उदय हुआ है, परंतु तुम्हारे इस रूप ने मेरे मानस पुत्रों के हृदय पर जो अपनी छवि अंकित की है, उसी के अनुसार इन्होंने तुम्हें ये नाम दिए हैं।
0: मैं आप सबके सम्मुख नतमस्तक हूँ।
1: हे कामदेव।
0: आज्ञा पितामह।
1: मेरा आशीर्वाद है कि बल पराक्रम में तुम समस्त देवताओं से भी अधिक प्रभावशाली रहोगे।
0: विधाता, आपकी ये अनुकंपा मेरे कर्म को बल प्रदान करेगी।
1: तथास्तु। पुत्रो
5: आज्ञा भगवान।
1: कामदेव को सृष्टि के प्रत्येक नर नारी के मध्य सनातन संबंध का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी तो बनना है।
5: हे परमपिता, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी दिव्य पुत्री रति अत्यंत रूपवती है। गुण और धर्माचरण में भी वो कामदेव के सर्वथा उपयुक्त है।
1: दक्षराज, तुम्हारा ये विवाह प्रस्ताव हर प्रकार से उत्तम है। कामदेव।
0: आज्ञा प्रभु।
1: तुम दक्ष पुत्री रति का पत्नी के रूप में वरण करो।
0: जो आज्ञा परमपिता।
6: देवी रति, इस मिलन की रात्रि में हमें अपने अनन्य रूप लावण्य का दर्शन तो कराइए। रति, आपके संकोच ने हमें और भी मोह लिया है। आपकी ये लज्जा सृष्टि की हर नारी का आभूषण बनी रहेगी। आप तो वास्तव में विधाता की अप्रतिम रचना है। आपको अपनी पत्नी के रूप में पाकर आज मैं पूर्ण हुआ।
7: देव।
6: रति,
7: आपको पति के रूप में पाकर मेरा जीवन भी सार्थक हुआ।
6: रति, हमारा ये पावन मिलन आज से हर नर नारी की संपूर्णता का द्योतक होगा। नर नारी के हृदयों में पवित्र प्रेम की लौ प्रज्वलित करेगा।
7: और यही प्रेम सृष्टि के सनातन कार्य का उत्प्रेरक बनेगा।
6: देवी, निष्कपट प्रेम मेरा और निष्काम आसक्ति आपका पर्याय होंगे।
7: आप निश्चल प्रेम की अविरल धारा होंगे और मैं उस धारा को ग्रहण करने वाला पात्र।
6: मैं सुर असुर और मनुष्य की भावी उत्पत्ति का साधन बनूंगा और आप मेरी अर्थात काम की साधक होंगी।
7: किंतु देव, यदि कोई सुर असुर अथवा मनुष्य इन पवित्र शक्तियों का दुरुपयोग करे तब?
6: तो वो पाप होगा देवी, और उसका दुष्परिणाम उसे भोगना होगा।
7: देव, आपका कथन अत्यंत श्रेयस्कर है,
6: आओ

0: शौनक जी, कामदेव रति विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी तथा उनके मानस पुत्र अपने अपने धाम को लौट गए। चहुं ओर आनंद का वास था, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। एक बार देवी संध्या के मन में सकाम विचार आ गया।
1: महाभाग सूत जी, उन साध्वी के मन में?
0: हाँ, इस विचार मात्र से वे आत्मग्लानी से भर उठी। पश्चाताप स्वरूप संध्या ने घोर प्रतिज्ञा कर डाली।
2: ये मेरे शरीर में विचित्र सा कंपन क्यों? ये मुझे बार बार उद्विग्न करता कोई अनाम विचार? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इसे संयमित क्यों नहीं कर पा रही? मेरे रोम रोम को सिहराती ये काम भावना, नहीं, ये पाप है। मेरा अपने ही मन पर कोई वश नहीं रहा। मेरा संयम समाप्त कैसे हो गया? नहीं नहीं, मेरा ये शरीर दूषित हो गया है। मुझे इस तन का त्याग कर देना चाहिए। जिस तन पर, जिस मन पर अपना वश नहीं, वो त्याज्य है। मेरा शरीर त्याज्य है। मैं ब्रह्मा पुत्री संध्या प्रतिज्ञा करती हूँ कि काम को मर्यादित करने के लिए कठोर तपस्या करूंगी, ताकि जन्म लेते ही प्राणियों के मन में काम भाव उत्पन्न न हो। तपस्या पूर्ण होने के पश्चात अग्नि में मैं अपनी देह की आहुति दे दूंगी।
3: देवी, अपने ललाट पर उभरी चिंता की इन रेखाओं का कारण बताएं। देवी,
2: हे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी, आवेग में आकर मैंने तपस्या का संकल्प तो ले लिया, परंतु मुने तपस्या के विधान से मैं अनभिज्ञ हूं। हे ब्रह्म शिरोमणि, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे तपोभाव की दीक्षा दीजिए।
3: देवी, जिस उद्देश्य से आप तपस्या कर रही हैं, उसे मात्र भगवान शंभु ही साध सकते हैं, अतः उन्हें अपने हृदय में स्थापित कीजिए। एकाग्रचित से केवल उनका ध्यान कीजिए। वे ही सर्वात्मा हैं, वे ही सर्वस्व हैं। उनके पुण्य प्रताप का स्मरण कीजिए।
2: धन्यवाद महामुनि, आपसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर मेरा चित्त शांत हुआ।

0: देवाधिदेव, आपकी तंद्रा भंग क्यों हो गई?
1: ब्रह्मा पुत्री संध्या के जाप से, देवी उमा।
0: संध्या के जाप से? परंतु प्राणेश, वो तो विगत 4 युगों से इस तपस्या में लीन है। आज यकायक आपका ध्यान उसकी ओर कैसे आकृष्ट हो उठा?
1: देवी उमा, हर बात का एक देश

0: निर्धारित होता है। अब समय आ गया है कि संध्या को उसके परिश्रम का फल प्राप्त हो।
1: तो विलंब कैसा महादेव? जाइए, संध्या को प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए।
0: जैसी आपकी इच्छा।

मेरे समक्ष अचानक ये प्रकाश पुंज कैसे उत्पन्न हो गया और इसमें से तो स्वयं मेरे आराध्य प्रभु शिव शंकर प्रकट हो रहे हैं। मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई।

0: ब्रह्मापुत्री संदेह, तुम्हारी कठिन तपस्या से हम प्रसन्न हुए। इच्छित वर मांगो संदेह।
1: प्रभु, आप सर्वज्ञाता हैं। मैंने काम को मर्यादित करने के उद्देश्य से ही आपकी आराधना की है।
0: तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जीवन की चार मुख्य अवस्थाएं होंगी, शैशवावस्था, कौमारावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था। तीसरी अर्थात यौवनावस्था में ही प्राणियों के हृदय में काम भाव उत्पन्न होंगे। कामोदय की यही निर्धारित मर्यादा होगी।
1: मेरी तपस्या सार्थक हुई भगवान।
0: संदेह, मैं तुम्हें ये वरदान भी देता हूँ कि तुम जैसी सती साध्वी तीनों लोकों में और कोई दूसरी ना होगी।
1: मेरे अहो भाग्य देव।
0: मेरा तीसरा वरदान ये है कि एक अति तेजस्वी ब्रह्म ऋषि तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे।
1: पति रूप में? परंतु देवाधिदेव, अपनी प्रतिज्ञा स्वरूप तपस्या सफल होते ही मुझे अग्नि में अपना देह त्याग करना है, यही मेरा अभीष्ट था।
0: संदेह, तुम्हारे अभीष्ट का उत्कर्ष होना तो अभी शेष है। इसी चंद्रभाग पर्वत पर महर्षि मेघातिथि पिछले 12 वर्षों से महायज्ञ कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में अग्निदेव अपने पूर्ण भाव से प्रज्वलित हैं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का सबसे अच्छा अवसर यही है।
1: परंतु देव, पति
0: पति, मेरे इस वरदान के रहस्य का उद्घाटन भी वही होगा। ब्रह्मा पुत्री, मेघातिथि का यज्ञ अब अपने अंतिम चरण में है, विलंब उचित ना होगा। चलो।
1: जो आज्ञा देव।

0: प्रभु कृपा से ये तीव्र अग्नि ज्वालाएं भी कितनी शीतल प्रतीत हो रही है। उन्हीं की माया से मुझे अग्नि में प्रवेश करते कोई नहीं देख पाया।
1: हे संदे, अब तुम हृदय में उसकी छवि का ध्यान करो जिसे तुम स्वामी रूप में प्राप्त करना चाहती हो।
0: महादेव, मेरे मन में तो उन्हीं तेजस्वी ब्रह्मचारी की छवि है जिन्होंने मुझे दीक्षा दी।

0: और आपकी आराधना का मार्ग दिखाया था।
1: तथास्तु। उचित समय पर महर्षि वशिष्ठ ही तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। इस समय तुम सूर्य देव का आह्वान करो।
0: जो आज्ञा देवादिदेव।

0: गया।
1: स्वागत है सूर्यदेव।
2: प्रणाम देवाधिदेव, मेरे यहाँ आने का प्रयोजन बताएं।
1: ब्रह्मापुत्री संध्या का भावी स्वरूप आप निर्धारित करेंगे।
2: जो आज्ञा देव। संधे, अग्नि में तपाए तुम्हारे इस शरीर को मैं दो भागों में विभक्त करके अपने इस रथ पर आरूढ़ करता हूँ। आज से संपूर्ण जगत में तुम दो नामों से विख्यात होगी। तुम्हारे शरीर का एक भाग रात्रि और प्रातः का मिलन करवाने वाली प्रातः संध्या कहलाएगा। शेष भाग दिन और रात के मध्य आने वाली साय संध्या के नाम से जाना जाएगा।
0: सूर्यदेव, मेरे इन दो रूपों का कार्य क्या होगा?
2: प्रातः संध्या के मोहक रूप में तुम देवताओं के बीच आनंद और स्फूर्ति का संचार करोगी तथा साय संध्या के रूप में पितरों की प्रसन्नता का कारण बनोगी।
0: जो आज्ञा सूर्यदेव। अरे प्रभु शिव शंकर और सूर्यदेव तो विलुप्त हो गए। देवाधिदेव के अंतिम वरदान का रहस्य। ये क्या, मेरे शरीर का आकार और मेरी आयु क्यों घट रही है? मैं युवावस्था से शैशव में परिवर्तित हो रही हूँ। क्या यही है प्रभु के वरदान का रहस्य?
3: वत्स, यज्ञशाला के लिए समिधा की व्यवस्था हो गई?
4: महामुनि, अरुंधति वही लेने गई है।
3: अच्छा, क्या तुमने उसे भेजा है?
4: नहीं देव, आश्रम के हर कार्य के बारे में उसे पता है। वो तो स्वयं भी।
3: ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो इतनी कर्तव्य परायण और अपने दायित्व के प्रति सचेत है।
4: हाँ देव, आपने उसे शिक्षा भी तो ऐसी ही दी है।
0: अरे अरे अरे ठहर तो सही, अरे कहाँ भागा जा रहा है? ठहर, पहले तो यज्ञशाला में कुलाचे भरता रहा और अब।
4: अरे क्या हुआ पुत्री अरुंधति?
0: देखिए ना मुनि महाराज, पिताजी का ये प्रिय मृग शावक यज्ञशाला को अपवित्र कराया है, अब उनके कुटिया में जा रहा था।
3: पुत्री अरुंधति, क्यों सता रही हो इसे? अरे अरे अरे देखो ना, कैसे डर कर मेरी गोद में छिप रहा है।
0: ओह हो पिताजी, इसने तो आपको भी अपवित्र कर डाला है। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व आपको भी पुनः स्नान करना होगा। लाइए लाइए, इस दुष्ट को मुझे दीजिए, इसे मैं अभी स्नान करवा कर लाती हूँ।
3: इसे स्नान? परंतु क्यों पुत्री?
0: पिताश्री, आप ही ने तो सिखाया है कि पवित्र स्थान पर जाने से पूर्व व्यक्ति को स्वयं को शुद्ध करना चाहिए।
3: किंतु ये तो मृग शावक है।
0: तो क्या ये किसी अपवित्र स्थान से नहीं आ सकता? लाइए दीजिए इसे।
3: लो लो, इसे ले जाओ पुत्री।
0: करूं करूं तेरी पिटाई? अरे तुम्हें तो आश्रम के नियम ज्ञात हैं, फिर भी तुम हटो क्या करते रहते हो?
3: हे प्रभु, मैं क्या करूं?
4: क्या हुआ गुरुदेव, आप इतने गंभीर क्यों उठे?
3: प्रिय शिष्य, अरुंधति की ये बढ़ती धर्म परायणता मुझे मुझे चिंतित कर रही है। उसके हृदय में धर्म के लिए जो स्थान है, उसमें सांसारिक जीवों के प्रति प्रेम का कोई अवकाश नहीं। भावना विहीन हृदय सांसारिक दृष्टि से पूर्ण कैसे हो सकता है? कहीं वो निर्दिष्ट सांसारिक कर्मों से विमुख ना हो जाए।
4: गुरुदेव मेघातिथि, अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं?
3: कहो शिष्य।
4: पुत्री अरुंधति का विवाह ही

0: उसे सामाजिक नियमों का पालन करने को प्रेरित कर सकता है?
1: ये विचार तो कई बार मेरे हृदय में भी आया है, परंतु
0: परंतु क्या मुनि श्रेष्ठ, हमारी अरुंधति तो सर्वगुण संपन्न है।
1: यही तो समस्या है, उससे अधिक गुणी और योग्य पति कहां मिलेगा?
0: महामुनि, जिन खोजा तिन पाइया, खोजने से तो प्रभु भी मिल जाते हैं।
2: उत्तम, अति उत्तम, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब तो मेरी चिंता का निवारण मेरे आराध्य ही करेंगे। अरे त्रिदेव, एक साथ मैं धन्य हुआ।
3: मुनि मेधातिथि, तुमने हृदय से स्मरण किया तो हम उपस्थित हो गए।
2: आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु शिव शंकर।
4: मेधातिथि, हमें तुम्हारी चिंता का कारण ज्ञात है।
3: परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ हर प्रकार से पुत्री अरुंधति के योग्य हैं
2: भगवान,
4: और अरुंधति भी उन्हें पति रूप में पाकर शोभायमान होगी। हाँ।
5: श्रीहरि का ये कथन सत्य है मुनि मेधातिथि, यही काल की नियति तथा अरुंधति के पूर्व जन्म में उसे महादेव से प्राप्त आशीर्वाद भी है।
2: जो आज्ञा त्रिदेव, जो आज्ञा।
6: और महामुनि सूत जी, इस प्रकार वशिष्ठ और अरुंधति का विवाह संपन्न करवाकर महादेव ने देवी संध्या को दिए वरदान को सार्थक कर दिया।
7: महात्मन सूत जी, कामदेव और संध्या की उत्पत्ति से लेकर वशिष्ठ अरुंधति विवाह तक का ये प्रसंग अति रोचक ही नहीं ज्ञानवर्धक भी था। फिर क्या हुआ मुनिश्रेष्ठ?
6: शौनक जी, आगे की कथा अर्थात दक्ष कथा बहुत विस्तृत है, उसे भी अवश्य सुनाऊंगा, परंतु कुछ अंतराल के पश्चात।
7: जैसी आपकी इच्छा महाभाग सूत जी।
8: श्रोताओं, शिव महिमा की आज की यह कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय खंड के पहले अध्याय से 10वें अध्याय तक ली गई थी। अगले प्रकरण में हम इससे आगे का भाग प्रस्तुत करते हुए दक्ष कथा से आरंभ करेंगे।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

साचो तखत गुरु राम दास साचो तखत गुरु राम दास साचो तखत।

بل بھنا سوئی رام داس گر بل بھنا

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं।

0: जासु बचन रवि कर निकर
1: राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहरु जो चाहसी उजियार। श्रोताओ मैं अकिंचन तुलसीदास अपने मुख रूपी द्वार की देहली पर राम नाम का मणिदीप रखकर आपके सामने आया हूं। सो क्यों? इसलिए कि इस अनुपम दीपक ने मेरे भीतर और बाहर जो उजाला कर दिया है, उस उजाले में मैं एक अलौकिक दृश्य देख रहा हूं। देख रहा हूं एक विशाल मानस, ऐसा सरोवर जिसमें मधुर मनोहर मंगलकारी यश का निर्मल और अथाह जल फैला है। किसका है ये यश? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बात ऐसी हुई कि मुनियों ऋषियों और महाकवियों द्वारा वर्णित इस कथा को मैंने अपने गुरु के मुख से सूकर क्षेत्र नामक तीर्थ में सुना था, किंतु समझी नहीं तस बालपन तब अति रहे हूं अचेत। मेरे गुरु ने कृपा करके बार बार मुझे कथा सुनाई और ज्यों ज्यों मेरी छोटी मति में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, त्यों त्यों मेरे मन में उजाला सा फैलने लगा। मन में ये संतोष उपजा कि उस लीला को मैं भाषाबद्ध कर पाऊंगा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरजुन मानि है जिन्ह कै विमल विचार। हे श्रोताओ, आज संवत 1631 मधुमास चैत्र की नवमी तिथि भौमवार है। आज इसी दिन सादर शिवजी को सिर नवाकर श्री हरि के चरणों में शीश रखकर मैं राम की गुणगाथा का आरंभ कर रहा हूं। शुक्ल पक्ष के अभिजित नक्षत्र की इस तिथि का दोपहर का समय ही समग्र चर अचर जड़ और चेतन प्राणियों को हर्षित करने वाली, जन जन के सुख की मूल, सभी लोगों को विश्राम देने वाली पावन राम जन्म तिथि है। भगवान ने जन्म क्यों लिया, सुनिए। दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित दीनहीन गाय के रूप में धरती की रुदनपूर्ण विनती सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवगण भगवान की स्तुति करने लगे।

0: श्रोताओं, भूमि और सुरगणों को दुखी हुआ जान, शोक संदेह को हरने वाली अंतरिक्ष की निस्सीम गुफाओं को मानो गुंजायमान करती हुई गंभीर गगन गिरा सुनाई पड़ी।
1: जनी डर पहुं मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हूं नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा। हरि हूं सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय।
0: श्रोताओ, चलिए अयोध्या नगरी। रघुकुल मणि, धर्म धुरंधर, गुण निधि, ज्ञानी, हृदय में सारंग धारण करने वाले, भगवान की भक्ति में लीन महाराजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।

0: मैं अंतिम आहुति देता हूँ। इसके बाद एकाग्र चित्त ध्यान लीन होकर किसी स्थान पर बैठे रहे।
1: गुरुदेव, क्या कौशल्या को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता?
2: क्यों राजन?
1: इसलिए कि एकाग्रचित होते होते मुझे लगता है कि मैं और कौशल्या हम नहीं हैं, कोई और दंपति है। और युगों पूर्व कल्प कल्पांत से पहले कहीं दूर घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं।
0: शांत राजन, नेत्र मूंदिए, यज्ञ पुरुष अग्निदेव का ध्यान कीजिए।
1: हाँ, कर रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ। आंखें मूंदते ही गुरुवर वहीं ध्यान चला जाता है। यही विधि बीते बरस खट सहस नीर आहार संवत सप्त सहस पुनी रहे समीर आधार।
3: ये तो शुभ लक्षण है राजन। युगों पहले की कोई तपस्या की स्मृति का उमड़ना शुभ लक्षण है।
1: लेकिन कौशल्या,
2: बुलाइएगा लेकिन अभी नहीं।
0: अब मैं समग्र समझा की ये आहुति अग्निदेव को समर्पित करता हूं।

0: आंखें खोलिए राजन, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने।
1: तो राजन, वशिष्ठ मुनि के वचन, श्रृंगी ऋषि की मंत्र साधना और तुम्हारी भक्ति भावपूर्ण याचना पूरी होंगी। यह लो, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई।
2: मैं क्या कहूं भगवान, परमानंद में मगन हूं और हरस में हृदय समाए। आपकी असीम अनुकंपा के लिए दंडवत करता हूं। आपके दिव्य दर्शन से मैं,
0: अरे अग्निदेव तो अदृश्य हो गए राजन, आपकी मंगल विधि संपूर्ण हुई। वशिष्ठ मुनि, मैं आपकी अतिथिशाला जाकर वहां विश्राम करूंगा।
3: अब बुलाइए महारानी कौशल्या को राजन।
2: प्रतिहारी, पटरानी को सादर यहां ले आओ।

0: क्या?
1: अग्नि देवता के दिए हुए इस चरु में जो पायस है उसका आधा भाग इस स्वर्ण पात्र में अपने ही हाथों डाले राजन।
2: जो आ गया।
3: आर्य पुत्र, आपने मुझे ही बुलाया, किंतु कैकेयी और सुमित्रा भी तो वातायन के उस ओर कहने का आदेश दे।
2: ठहरो कौसल्या, बैठो। सुनो, जब श्रृंगी ऋषि द्वारा अंतिम आहुति देते समय मैं उनके आदेशानुसार आंख मूंद कर ध्यान मग्न होने लगा तो मुझे जान पड़ा कि युग युगों पहले किसी बीहड़ जंगल में तुम और मैं न जाने कैसी अंतहीन तपस्या में लीन बैठे हैं।
3: हाँ, हाँ अरे पुत्र, आंखें मूंदते ही वो दृश्य इस क्षण मेरे भी सामने स्पष्ट होता जा रहा है। और फिर हम दोनों की तपस्या के बाद मांगो मांगो बरु भय नभ पानी परम गंभीर कृपा अमृत सानी।
2: तब हम दोनों ने कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न हो ये वर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही यही कारण मुन
3: जो प्रसुंदि मन मानस हंसा सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा देख ही हम सो रूप परिलोचन कृपा करो परतारित मोचन।
2: क्या अलौकिक रूप था वो, उन चरणों की शोभा पद राजीव बरन नहीं जाए मुनि मन मधु बस ही जिन माही।
1: हे राजन, आप दोनों उस जन्म में मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे। आज आप दोनों के उस महातप और भगवान के वरदान के फलस्वरूप।
2: वरदान? ओह, हमने कहा एक लाल सा बड़ उर माही सुगम अगम कहीं जात सुनाई।
3: तुम्हारी देत अति सुगम गुसाई अगम लागी मोहिनी कृपनाई।
2: तानि शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सद्भाव चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव।
1: और वो वर मिला, लेकिन वो रूप भूल जाइए महाराज, भूल जाइए आप। अब
3: कैसे भूल जाएं गुरुवर, भगवान ने स्वयं कहा था मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिटही अनुग्रह मोरे।
1: देवी, भगवान स्वयं भुला देंगे और अवसर पड़ने पर स्वयं याद दिला देंगे, यही तो भगवान की लीला होने जा रही है। देवी, अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त इस पायस खीर का आधा भाग अपने पति से सादर ग्रहण करें। उठाइए ये स्वर्ण पात्र, राजन डालिए चरु में से पायस, धीरे धीरे। हाँ, बस बस। प्रतिहारी, देवी कैकेयी और सुमित्रा को बुलाओ। आइए देवी कैकेयी और आइए देवी सुमित्रा, इधर बैठे। देवी कैकेयी, चरु में से आधा भाग लीजिए। राजन, अब शेष पायस को देवी सुमित्रा के स्वर्ण पात्र में डालिए। देवियों, इस दैवी प्रसाद को अब आप अंतपुर में अपने अपने कक्ष में जाकर प्रसन्न वदन होकर पान करें।
4: यही विध गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी मंदिर में सब राजे ही रानी शोभा सील तेज की खानी। और जब चैत्र मास नवमी तिथि भोमवार को भगवान का जन्म हुआ तब समस्त देवताओं के समूह को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे। गंधर्वों का गान हुआ, सुमनांजलियों से विमल गगन छा गया और उसके बाद

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। कैकेयी के भरत शत्रुघ्न और सुमित्रा के लक्ष्मण के जन्म होने के उपरांत चारों भाइयों की शिशु लीला मैं अकिंचन दासानुदास तुलसीदास भला कैसे करूं उस बाल लीला का वर्णन। बस सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। नामकरण हुआ चूड़ा कर्म संस्कार उपनयन और गुरु से शिक्षा। श्रोताओं

0: ये सब चरित मैंने गाया, अब मन लगाकर आगे का प्रसंग सुनिए। राजा दशरथ का दरबार, अवध नरेश, मुनि वशिष्ठ, चारों भाई और अन्य लोग।
1: महाराज, शुभ विपिन के अपने आश्रम में बसकर ज्ञान मनन तप करने वाले गाध तनय मुनिवर विश्वामित्र जी पधारे हैं।
2: हमारे धन्य भाग्य, सब उठकर उनका स्वागत करें।
3: बैठिए अवध नरेश, बैठिए मुनि वशिष्ठ। वास्तव में एक ही मनोरथ है मेरा राजन, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना।
2: ये आप किसकी बात कर रहे हैं मुनिवर? मेरा दंडवत स्वीकार करें।
3: आप नहीं समझेंगे राजन इस रहस्य को, पर मेरे बंधु वशिष्ठ समझ गए होंगे।
2: अस्तु, ये मेरे चार बेटे हैं मुनिवर। राम, चरण वंदन करो मुनिवर विश्वामित्र के। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। मुनि, अस कृपा ने की ने उकाओ, केही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लावूं वारा।
3: असुर समूह सतावहि मोहि, मैं चाचन आयो इंद्रप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसिचर बध मैं होब सनाथा। देहु भूप मन हरषित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनक अति कल्याण।
4: राजन, यूं सहसा आपका मुंह खो जाना उचित नहीं। आप रघुवंशी राजाधिराज हैं, ये ठीक नहीं कि आपका हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। उत्तर नहीं महाराज।
2: गुरुदेव, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे हो विचारी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे अतिथि हैं और उस पर भी विप्र। मांगे हो भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिख एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनही गुसाई। और फिर ये भी तो सोचिए, कह निशिचर रति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा।
3: वशिष्ठ जी, आप ही अवध नरेश को आश्वासन दें।
4: राजन, पिता के मोह को अलंकार समझिए, कवच नहीं। आप क्षत्रिय हैं और आपका कर्तव्य है कि मुनियों के आश्रमों पर असुरों का जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद करने के लिए सबसे समर्थ उपाय कीजिए। राम आपकी दृष्टि में हमेशा शिशु ही रहेंगे, ये मैं समझता हूं। किंतु राम पुरुष सिंह हैं, वीर हैं, धीरमती हैं, मैं उनका गुरु ये जानता हूं। और आप राम के पिता नहीं, आप अवध नरेश, आप भी सत्य से अपरिचित नहीं। इसलिए संदेह का नाश कीजिए। कौन जाने राम के इस अभियान के पीछे कोई ऐसा मंगल मुहूर्त, कोई ऐसी कल्याणकारी घड़ी बाट जोहती हो जिसका आपको अभी तनिक भी आभास नहीं है। इसलिए भूपवर, बहुविधि देई आशीष, आप उन्हें ऋषिवर को निशंक सौंप दीजिए।
2: आपका कहना ठीक है। राम, लक्ष्मण, आगे आओ। तुम क्षत्रिय पुत्र हो, भुजबल और आत्मबल दोनों की महिमा का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से पा चुके हो। समझ लो कि अब तक प्राप्त शिक्षा का अभ्यास करने और शेष शिक्षा प्राप्त करने तुम मुनि श्रेष्ठ के साथ जा रहे हो। पर इधर इधर मेरे निकट आओ, तुम्हें हृदय से तो लगा लूं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को।
5: अब अपनी जननी से विदा लेने अंदर चलो। आओ।
3: वशिष्ठ जी, मैंने तो महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना।

श्रद्धालु श्रोताओं, यों श्याम गौर सुंदर दो भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले। बीहड़ घना जंगल, रास्ते में मुनि को दीखी राक्षसी ताड़का। सुनी ताड़का क्रोध भरी धाई, श्री रामचंद्र ने धनुष खेचा। देखने में भयानक ताड़का, क्या वास्तव में राम की वैरी थी जिससे वे युद्ध करते? नहीं, देखिए एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जान के ही निज पद दीना। उसके बाद विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मुनि वृंद होम करने लगे और राम लक्ष्मण रखवाली। मंत्रोच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही निशाचर मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेना लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मारीच पर तो राम ने बिना लोहे के फल वाले बाण से ही ऐसा प्रचंड आघात किया कि वो सत योजन जा सागर पारा। भीषण युद्ध होने लगा। राक्षस सुबाहु और उसकी सेना क्रोधावेश में उन्मत्त लहरों सी उमड़ पड़ी। तब राम ने अग्निबाण संधाना, पावक सर सुबाहु पुनि मारा और लक्ष्मण अकेले ही असुर सेना पर बरस पड़े। अनुज निशाचर कटक संहारा। आश्रम में निर्भय शांत निर्द्वंद यज्ञ कार्य चलने लगे। राम लक्ष्मण को पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाने के बहाने उनके प्रति अपनी आंतरिक भक्ति ही से आप्लावित होने लगी। एक दिन मुनि ने कहा दोनों भाइयों से कि पुरानी कथाएं तो आपको अनेक सुनाई, चलिए कुछ वर्तमान चरित्र दिखाऊं। मिथिला में राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग उस नगरी की छटा और धनुष यज्ञ का मनोरंजन देखें।

उस आश्रम में पत्थर की एक शिला देखी। विश्वामित्र ने कथा बताई। शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का पत्थर का शरीर है। क्यों? पति का शाप। अहल्या से इंद्र ने अपावन व्यवहार किया, पति ने दोनों को शाप दिया, अहिल्या पत्थर बन गई, इंद्र को भयंकर रोग ने ग्रस लिया। राम, ये पत्थर की मूरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्यों? गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहन कृपा करहु रघुबीर। देखिए और सुनिए ये लौकिक अलौकिक लीला। राम अपने चरणों से शिला को छूते हैं और

0: के बाद गंगा पार करके राम लक्ष्मण मुनि के संग विदेह नगरी पहुंचते हैं। वहां की सभ्यता, वापी, कूप, सुमन वाटिकाएं, चौहट गलियां, चारू बाजार, मंगलमय मंदिर सभी देखे और देखे। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। लेकिन ऐसी अद्भुत जनक नगरी की शोभा और उसके सुभग नर नारियों का अवलोकन करने वाले ये दो किशोर बटोही जब सैर करने निकले, सारी नगरी वैभव ऐश्वर्य की भव्यता उन दोनों की दिव्य शोभा को देखकर मानो ठगी सी रह गई। श्रोताओं, धनुष यज्ञ से एक दिन पहले की संध्या, एक पुरातन प्रीति की जो निराली घटना घटी उसे सुने। राजा जनक की वाटिका जहां वसंत ऋतु की छटा फैली है, राम लक्ष्मण शोभा निरखने पहुंचते हैं और महिलाओं से पूछकर फुलवारी में फूल चुन रहे हैं। एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवारी में आ पहुंची। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम विवश सीता से जाकर बोली,
1: सखी देखन बागु कुमार दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गार के में कहां बखानी, गिरा अनैन नैन बिनवानी।
2: अरे ये तो वही तो राजकुमार है, सुन हर्षि सब सखी से आनी, सी यही अति उत्कंठा जानी, एक कही नृप सुतते आली, सुनिजे मुनि संग आई काली, जिन्हने जो रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहां तह सब लोगू, अवसी देख अही देखन जोगू। अरे राजकुमारी तुम चारों तरफ यूं कैसे देख रही हो, चकित बिलो कति सकल दिसी, जाने से सुन रिगी सभी।
3: इस फुलवारी के सुमन अत्यंत सुहावने हैं, पल्लवों में वसंत की छटा विकस रही है, मुनिवर को भी भले लगेंगे।
4: सारा बगीचा ही परम रमणीक है। और ये सुना तूने
3: क्या,
4: कंकन किंकिन नूपुर धुनी,
3: तात
4: मानह मदन दुंदुभि तीन्ही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही।
3: कौन है ये जिन्हें देख के आपके भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमित तजे दिगंचल।
4: तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई।
3: पर बात इतनी ही तो नहीं जान पड़ती।

0: समझा, मुझे तो आपका इस तरह ठगे से रह जाना ही बहुत भला लगता है तात।
1: लक्ष्मण, मैं असमंजस में हूं।
0: स्वाभाविक ही है तात।
1: वह बात नहीं, सुनो। रघुबन सिन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु थरई नकाउ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपनेहु पर नारी न हेरी।
0: लेकिन भगवान, विदेह कुमारी भी तो शोभा की सीमा ही जान पड़ती है।
1: पर लक्ष्मण, यह मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं गुरुओं द्वारा दिखाए पथ से विचलित हो रहा हूं? वह आदर्श जिनके लहे ही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर तियमनु डीठी।
0: इस लता गुल में कुछ निराले ही फूल हैं, कुछ इनमें से भी चुने।
2: राजकुमारी, तनिक इधर आओ, यहाँ से देखो उस लता की ओट में वो रहे दोनों श्यामल गौर किशोर सुहाए।
3: सखी,
2: क्या
3: हमारी राजकुमारी प्रेम बस हो गए हैं? कौन सच की बात है?
2: देखो ना, लता मंडप में से दोनों बिल्कुल बाहर आ गए हैं। कैसे अपूर्व छविमान लग रहे हैं दोनों। निक से जनुजुग बिमल बिधु, जलत पटल बिल गाई।
3: जनक सुता तो गिरिजा की आराधना करने चली।
4: पूजन को विलंब हो रहा है सखी।
2: राजकुमारी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बोप किशोर देखी कि न लेहू।
3: सकुचो मत राजकुमारी,
2: नयन उधर कर देखो ना। सन्मुख आमनी सामने दो रघु सिंहों का अवलोकन करो।
4: सखियो, मुझे मुझे न जाने कैसा लग रहा है।
2: क्या हुआ, क्या हुआ राजकुमारी?
3: चित्त तो ठीक है ना?
2: कैसी बात पूछती है तू?
4: चित्त में आह्लाद भी है और क्षोभ भी। सखी,
2: क्षोभ क्यों?
4: सुमेर पिता पन मन अति क्षोभा। और क्या कहूँ सखी?
2: सखियो, राजकुमारी को जो परबस देखकर मुझे भय लगता है, इन्हें अब ले चलना।

0: मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदा उरपुर सबही के।
1: सुनु सीर, सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहिं जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीर, सनेहु जानत रावरो।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।